0: आदमी पीते हो गए आने
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज पीते हो गया हमको आज पीते हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलवा बाबू जी हलवा।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज किसे हो गई आंखें, आज किसे हो गई आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: ஹம் ஹார ஹார ஹார் ஓ ராஜா ஹார ஹார ஹார் ஓ ராஜா ஹார ஹார ஹார் ஆஜ கிதே ஹோ கே ஆஜே ஆஜ கிதே ஹோ கே ஆஜே சார சார சார் ஓ ராஜா சார சார சார் ஓ ராஜா சார சார சார்
1: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए डीरा टा डीरा

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला ता दिला ता

0: होश हमारे पंछी बन के हो गए नौ तो ग्यारह,
1: ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह,
0: किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए बारह। होश हमारे पंछी बन के हो गए नौ दो ग्यारह, किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए बारह। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए।
2: दिला का दिला चलो जो चलो, दिला दिला चलो जो चलो।

आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला का दिला का

प्रयाग न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बितकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिटकी बिटकी जाए। दिला ता दिला

0: होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए।
1: दिला का दिला चजो जो चजो चू, दिला दिला चजीला चजो चू।

दा मगर तुझ सा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।

ना होए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दामन बचाना मेरे पीछे बड़ा है जमाना, होए बड़ा मुश्किल है।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

0: कमी हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जारो जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

0: के हम ही हो के खफा भूल गए। जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर